0: सबन रेडियो 94.7 सुन रहे सारे लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है जी अज दे इस खूबसूरत शाम दे प्रोग्राम जड़ा भी तुसी एवरी इवनिंग 7 बजे तो लैके 8 बजे तक सुनते हो मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे 7 to 8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक ये प्रोग्राम तुहाडी सेवा दे विच पेश कीते जांदे अज दा प्रोग्राम जड़ा 8 बजे तक चलेगा ते अलग अलग प्रोग्राम दीआं खबरां ते गल्लां बातां इन्हां प्रोग्रामां दे विच तुहाडे नाल पेश करदे आं ते इस तों अलावा लोकल इंटरनेशनल न्यूज जड़िया ने कि की चल रहा ओ बारे जानकारी जड़ी है वो भी तेरे साझी करते हैं अज के प्रोग्राम च कुछ इसे तरह दलां बात खबर जड़िया ने शेयर करा वंस अगेन तुम दस दिए भी ये प्रोग्राम जरा 8 बजे तक चलेगा जिद च आप मैं ता होस्ट दोस्त राजेश इस प्रोग्राम तक लैके हाजिर हाँ जल्दी साढ़े नाल कई बार कोई गैसट भी आते हैं जिन्होंने आप गलबात करते रहने बट अज के प्रोग्राम च गैस्ट तो इलावा आप गल्लां बातां जिहड़ियां जी अपनियां करांगे ते कुछ न्यूज़ जिहड़ियां ने इन्हां प्रोग्रामां दे विच पेश कीतियां जांदियां ने उन्हां न्यूज़ दे उत्ते भी नज़र मारांगे ते देखदे हां वी की कुछ कित्थे कित्थे चलिया दुनिया भर दे अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही हुंदियां उन्हां सारिआं दे बारे जानकारी जिहड़ी उह तुहाडे नाल शेयर करदे हां मौसम जिहड़ा अक्सर क्योंकि मौसम दी शुरुआत ते आपां प्रोग्राम दी शुरुआत करदे पर मौसम जिहड़ा काफ़ी खराब हुंदा जा रहा वैसे अज सारा दिन काफी वधिया गर्म वैदर सीगा ते हुण इह वैदर जिहड़ा इह ठंडक वाले पासे नूं जांदा लग रहा जां बदलां वाले पासे नूं जांदा लग रहा सो इहदे बारे जानकारी जिहड़ी है उह वी आपां लैणे आ ते अपनी गल्लबात जिहड़ी है उह वी तुहाडे नाल शेयर करदे आ फ्लू दा टाइम वी है वैसे ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਐਫਐਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 to 8 ਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ
1: ਬੀਬੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਜ ਦੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਮਗਰ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਕਰ जंग खत्म करने के लिए डील हुई शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में MOU साइन करेंगे अमेरिका और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर हुई बात जानेंगे क्या इससे मध्य पूर्व में आएगी शांति क्या यूएस ईरान डील के बाद लेबनान में खत्म हो जाएगा इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष कैसा है वहां हाल दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने की भारी बमबारी ऐतिहासिक कैथेड्रल को भी बनाया निशाना कम से कम 9 की मौत ब्रिटेन में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का किया गया ऐलान जानेंगे क्या है सरकार की योजना क्या कहते हैं लोग स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में मैं हूं सारिका सिंह एक जंग जो फरवरी के आखिर से अब तक चल रही थी आखिरकार 3.5 महीने के संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान उस जंग को खत्म करने के लिए राजी हो गए हैं और दोनों देशों में एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट पर सहमति भी बन गई है इस फ्रेमवर्क डील के तहत दोनों कई मसलों को सुलझाने के लिए करीब 60 दिनों तक और बातचीत करेंगे और इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे तमाम सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों पर चर्चा हो सकती है ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि इन 60 दिनों के अंदर अंदर ईरान को कई मुद्दों पर बात करनी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना है इसके साथ ही कई और मसले हैं जिनकी वजह से इस जंग की शुरुआत हुई थी और अब अमेरिका और ईरान दोनों को यह सहमति बनानी होगी आइए पहले देख लेते हैं कि वीकेंड पर क्या क्या डेवलपमेंट हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि डील कंप्लीट हो गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा ट्रंप ने साथ ही यह भी लिखा कि लेट द ऑयल फ्लो यानी अब तेल की सप्लाई होने दीजिए और यही सबसे

0: अहम बात है क्योंकि जंग शुरू होने के बाद गल्फ में बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर फंस गए थे और ऑयल ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और अब अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में दस्तखत होने की उम्मीद है और इस प्रोसेस में मेडिएट करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता हो गया है जिससे सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रुक जाएगी, जिसमें लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रहा संघर्ष भी शामिल है। हालांकि इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने कहा कि उनकी सेना लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन्स में तब तक बनी रहेगी जब तक जरूरी होगा। लेकिन क्या यह सब कुछ कर पाना आसान है? इसमें दिक्कतें क्या हो सकती हैं? इस बारे में बता रहे हैं यरूशलम में मौजूद बीबीसी संवाददाता जॉन टॉनिसन।
1: Well, there's not a lot of detail for starters. This is a memorandum of understanding.
2: फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये एक memorandum of understanding है। ये final समझौता नहीं है। अगले 60 दिनों में इसकी शर्तों पर विस्तार से काम होगा और देखा जाए तो इस दौरान लड़ाई पूरी तरह रुक जानी चाहिए। लगता है डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता है कि तेल की सप्लाई दोबारा शुरू करवाई जाए, इसलिए ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने पर है। असल में वो यही कह रहे हैं और यही इस एमओयू में भी लिखा गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई ठोस जानकारी इसमें नहीं है। इस पर अगले 60 दिनों में चर्चा करनी होगी। सवाल है कि क्या ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेगा? डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली पीएम नेतन्याहू इस युद्ध के अलग अलग चरणों में कहते रहे हैं कि ये प्रोग्राम रुकना चाहिए, लेकिन इसका जिक्र भी इस एमओयू में नहीं है।
0: कई देशों ने इस खबर का स्वागत किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि हॉर्मूज का फिर से खुलना बेहद जरूरी है। सऊदी अरब और कुवैत ने भी समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति बहाल करने में समझौते का स्वागत किया है। इस बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है और शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है, लेकिन सिंगापुर में मौजूद बीबीसी संवाददाता निक मार्श बता रहे हैं कि ताजा डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि तेल सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें खत्म हो गई हैं।
3: Will the oil flow, you know, should ships be starting their engines?
4: क्या तेल की सप्लाई शुरू होगी? क्या जहाजों को अपने इंजन शुरू कर देने चाहिए? लगता है कि ये आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक है। अब भी कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। अभी तो समझौते पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल शायद लेबनान और इसराइल की प्रतिक्रिया का है। सवाल ये भी है कि अमेरिका को ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी खत्म कर शायद लेबनान और इसराइल की प्रतिक्रिया का है सवाल ये भी है कि अमेरिका को ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। ईरान की एक शर्त ये भी है कि उसके तेल पर लगाए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं, और ऐसी चीजें रातों रात नहीं होती।
0: इस जंग के अलग अलग पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान का कहना है कि यूएस और ईरान के बीच हुए समझौते में लेबनान में जारी जंग खत्म करने की बात भी शामिल है, लेकिन इसराइल और हिजबुल्ला इन निगोसिएशंस का हिस्सा नहीं दिख रहे। इस डील के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही लेबनान में जारी जंग खत्म करने की बात भी शामिल है लेकिन इसराइल और हिजबुल्ला इन निगोसिएशंस का हिस्सा नहीं दिख रहे इस डील के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही रविवार को इसराइल ने निगोसिएशंस का हिस्सा नहीं दिख रहे इस डील के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही रविवार को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले किए। देखिए बीबीसी के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जर्मी बॉयन की रिपोर्ट।
5: इसराइल ने दक्षिणी बेरूत पर किए गए हमले का अपने एक ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो जारी किया है। दक्षिणी बेरूत पर इसराइल का यह हमला सुबह हिजबुल्ला की ओर से किए गए हमले का जवाब भर नहीं था। ये ईरान और अमेरिका के लिए एक संदेश भी था कि लेबनान में इसराइल का सैन्य अभियान सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगा कि ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के लिए लेबनान को भी एमओयू का हिस्सा बनाया है। ये जुटे थे दिखाई दे रही है। हिजबुल्ला ने म्यूजिक के साथ अपना
6: अपने लोगों के लिए भी कुर्बान हो जाएंगे।

0: अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐसा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अब वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार दिखती है। इसराइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन वो न सिर्फ हालात से निकल पाई बल्कि बची भी। बेरूत के इस तरह के गरीबी भरे इलाकों में रहने वाले हिजबुल्ला समर्थकों में ज्यादातर ईरान के अधिकतर लोगों की तरह ही शिया मुसलमान हैं। शहर के केंद्र के पास ही इन सड़कों में इसराइल से लड़ते हुए मारे गए स्थानीय लोगों की तरह ही शिया मुसलमान हैं। शहर के केंद्र के पास ही इन सड़कों में इसराइल से लड़ते हुए मारे गए स्थानीय लोगों को हीरो माना जाता है। पास ही इन सड़कों में इसराइल से लड़ते हुए मारे गए स्थानीय लोगों को हीरो माना जाता है। सदाला यूसुफ का कहना है कि युद्ध में शहीदों की जरूरत होती है। आम लोगों की मौत का दुख है, लेकिन इस धरती को कुर्बानी चाहिए। लेकिन लेबनान के दूसरे बड़े समुदायों, सुन्नी मुसलमानों और ईसाइयों में से कई हिजबुल्ला को दोष देते हैं कि उसने दूसरों के युद्ध में घसीटा, पहले हमास के लिए और अब ईरान के लिए। यहाँ लोगों को युद्ध बहुत दूर महसूस होता है और वो चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। यहाँ के सांसद गेब्रान बासिल लेबनान के प्रमुख ईसाई नेताओं में से एक है। इस वक्त लेबनान कई समस्याओं का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है?
1: 1948 में इसराइल बनने के बाद से लगातार और कभी ना खत्म होने वाला युद्ध।
0: आपके हिसाब से हिजबुल्ला किसके लिए लड़ रहा है? क्या वो लेबनान के लिए लड़ रहा है या ईरान के लिए?
2: Unfortunately, Hezbollah is fighting.
1: दुर्भाग्य से हिजबुल्ला लेबनानी इलाकों की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन साथ ही ईरान के एजेंडे पर भी चल रहा है। यही वजह है कि उसने जनता का समर्थन खो दिया है।
2: What made him lose his popular legitimacy?
0: दक्षिण की ओर कुछ घंटे सफर करने पर आप टायर पहुंचते हैं, जो इसराइल की सीमा के पास है। महीनों की इसराइली हवाई बमबारी के बाद ये शहर लगभग वीरान और तबाह दिखता है। इसराइल का कहना है कि वो सीमा के पास के अपने शहरों की रक्षा कर रहा है और हमलों का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि ये युद्ध हिजबुल्ला और ईरान से है, लेबनान की जनता से नहीं। टायर में रुकने वाले कुछ लोगों में से एक खलील मोटोका का कहना है कि ये बात सही नहीं है।
3: All the civilians, they are Muslim, Christian, Dorzi, they are...
4: जो आम लोग मारे गए उनमें मुसलमान, ईसाई और द्रूस सभी शामिल हैं। 2 महीने पहले एक दिन उन्होंने बेरूत पर हमला किया। एक ही समय में 100 बम गिराए गए। ये कैसे हो सकता है?
3: The same time, the same hour. How come?
4: जब वो कहते हैं कि वो सिर्फ हिजबुल्ला को निशाना बनाते हैं, तो हिजबुल्ला है कौन?
3: हिजबुल्ला
4: यही रहने वाले लोग हैं। वो किसी दूसरे देश या किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। उन्हें हिजबुल्ला का मतलब ही नहीं पता।
0: ये सब उस युद्ध की ही कड़ी है जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने गजा से इसराइल पर हमला किया था। उसकी जड़ें अरब और यहूदियों के बीच एक सदी गजा से इसराइल पर हमला किया था उसकी जड़ें अरब और यहूदियों के बीच एक सदी से ज्यादा पुराने अनसुलझे विवाद में है। पिछले 2.5 साल में अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरह की जीत का दावा किया, लेकिन वो ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगे। पिछले 2.5 साल का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि सेना की मदद से मसले हल करने की कोशिश से और तबाही मचेगी। कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। वो दूसरा रास्ता एक सोच समझकर बनाई गई राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन युद्ध के बीच कूटनीति के लिए जगह कम होती जा रही है। टायर शहर में हाल ही में अपने घर गंवाने वाले लोग समंदर किनारे डेरा डाले हुए हैं। दुनिया के बाकी लोगों की तरह वो भी इंतजार में हैं कि अमेरिका और इसराइल की उस सोच के नतीजे क्या होंगे कि सिर्फ बमबारी से ईरान की हुकूमत को खत्म किया जा सकता है। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन की रिपोर्ट।
5: और 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही रूस यूक्रेन जंग फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। रूस ने यूक्रेन की पवित्र जगहों में से एक परचेस्क लावरा के कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर भी भारी बमबारी की। इन हमलों से कीव के कैथेड्रल यानी बड़े चर्च की छत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। आप यहां तस्वीरों में बिल्डिंग से धुआं उठता देख सकते हैं। रूसी सेना ने 600 ड्रोन्स, 70 मिसाइलें दागी, जिनमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। कीव से इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता निक बेक।
6: This was a sustained attack by the Russians. It lasted more than 4 hours, and we've just.
1: रूस का ये हमला लगातार हुआ और ये 4 घंटों से ज्यादा चला। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा रूस की ओर से दागी गई 70 से ज्यादा मिसाइलों में से उन्होंने 50 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और इमारतों से गिरे मलबे की वजह से नीचे

0: खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और वो मॉनेस्ट्री जिसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है और जो 1000 साल पुरानी है पचेर्स्क लावरा वो इस हमले की जद में आ गई और इस हमले का विरोध जताने के लिए आज यूक्रेनी अधिकारी और धार्मिक गुरुओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि रूस का ये हमला यूक्रेनी लोगों के खिलाफ है और उन्होंने इसे ईसाई धर्म के खिलाफ किया गया हमला बताया।
1: और ब्रिटानी सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की योजना का ऐलान किया है। ये बैन अगले साल लागू हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा बैन लागू करने वाला पहला देश है और स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, मलेशिया, डेनमार्क, इंडोनेशिया, नॉर्वे और कनाडा इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता जोई क्लाइनमैन की रिपोर्ट।
2: एक हफ्ते पहले ब्रिटेन की डाउनिंग स्ट्रीट पर पहुंचे ये माता पिता प्रधानमंत्री से बात करने आए थे। इन सभी ने अपने बच्चों को ऑनलाइन से जुड़े खतरों की वजह से खो दिया। इनका संदेश साफ था, ये रुकना चाहिए। उन्होंने केयर स्टार्मर से कहा कि वो नहीं चाहते कि इस ग्रुप से कोई और जुड़े।
0: हम अपने रुख और अपने ख्यालों को लेकर काफी कठोर हैं और हमें होना भी है। हमें एक लकीर खींचनी होगी। हमारे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे जैसे भी री जाए। हम सब अपने बच्चों के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, साथ ही उन बच्चों के भी जो इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे। तो हम सब एक साथ इस लड़ाई में शामिल हैं।
3: I will not present it as cost-free.
4: मैं इसे ऐसे पेश नहीं करूंगा कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया ने युवाओं को कोई फायदा नहीं पहुंचाया हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। सरकार को लगता है कि इस पर पूरी तरह बैन लगाना सही विकल्प है।
2: मकसद है कि युवाओं को इंटरनेट से बचाया जाए और 10 में से 9 अभिभावक जिन्होंने सरकार के एक बड़े पब्लिक कंसल्टेशन में हिस्सा लिया, उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया कि बच्चों को इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स से दूर तब तक रखा जाए जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। सरकार इससे आगे जाकर और भी कदम उठाने की सोच रही है, जैसे कि रात को इंटरनेट कर्फ्यू लगाना और 18 साल से कम उम्र वालों के लिए स्क्रॉल करते जाने पर ब्रेक लगाना। टेक कंपनियों पर जबरन इसका पालन करने का दबाव रहेगा या फिर पहले जाने पर ब्रेक लगाना। टेक कंपनियों पर जबरन इसका पालन करने का दबाव रहेगा या फिर पेनल्टी लगेगी। कंपनियां कहती हैं कि वो बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5: Make no mistake.
6: इसमें कोई शक नहीं, ये बदलाव जिंदगियां बदल देगा।
5: Lives.
2: पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश बना जिसने ये बैन लगाया था। हालांकि कुछ बच्चों ने या तो एज वेरिफिकेशन से बचकर निकले, जानकारों ने ब्रिटेन के इस प्लान को ऑस्ट्रेलिया प्लस का नाम दिया है, लेकिन सभी एक्सपर्ट नहीं मानते कि ये बेस्ट सोल्यूशन है।
7: एजुकेशन, शिक्षा, सहयोग और मिलजुल कर काम करना, सीधे बैन लगाने और टेक कंपनियों को धमकाने से उलट ये आगे का तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं कि बैन लगाना ही सही तरीका हो जिससे आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं। इन सभी में आपका असली मकसद होना चाहिए कि प्रभावी तरीके से बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए।
2: ऑनलाइन सेफ्टी को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। पिछले हफ्ते स्टार्मर ने उस प्लान का ऐलान किया जिसमें बच्चों को फोटो खींचने, शेयर करने या फिर फोन्स पर आपत्तिजनक तस्वीरें देखने से रोकता है। इस प्लान के तहत एप्पल और गूगल को हल निकालने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर फोन या तो एंड्रॉयड है या आईफोन। सोशल मीडिया का बैन शायद इसी तरह काम करेगा। अगर बच्चों की उम्र कम है तो उन्हें ये एप्स स्टोर्स में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ कैंपेनर्स का कहना है कि पाबंदी लगाने की बजाय टेक जायंट्स पर उनके प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बनाने के लिए दबाव बनाया जाए। बीबीसी संवाददाता जोई क्लाइन।
8: दुनिया दे विच लड़ाई जिहड़ी लगातार चल रही है पीस दीआं खबरां दे नाल नाल, क्योंकि बच्चिआं दी जिहड़ी जिंदगी है वी बड़ी इंपोर्टेंट है साडे सारिआं वास्ते, क्योंकि बच्चिआं नूं प्रोटेक्ट करदा जिहड़ा इह वड्डिआं दा फर्ज बनदा, स्पैशली जिहड़े चुणे होए नुमाइंदे हुंदे आ ते उहनां दे पेरेंट्स, इह दोनों नूं मिल के काम करना चाहीदा तां कि बच्चे जिहड़े ने उह सेफ रहिण। ते कुछ बच्चे ते आपां इह देखदे आ ना वी जिहड़े जिन्हां दे विचारिआं दी जान चली गई, बट उस तों इलावा बड़े होर ऐसे बच्चे ने जेड़े स्ट्रगल कर रहे हुंदे ने जान जाना एक एंड पॉइंट जिथे जाके उन्हें नाल इस तरह हुंदा, बट उस तो पहला जो स्ट्रगल करते हैं जिंदगी दे विच बहुत कुछ चीजा जेड़िया ने वो गवा लेंदे हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो जेड़ा स्ट्रिक्टली जेड़े बच्चे

0: जाएगा। मंत्री के सामने अब तो जीवन मरण का प्रश्न था, मुझे उत्तर चाहिए, और अगर आपने उत्तर नहीं दिया 7 दिन बाद आपका मंत्री पद चला जाएगा। मंत्री के सामने अब तो जीवन मरण का प्रश्न था, करें तो करें क्या। मंत्री पूरे राज्य में घूमने के लिए निकल गया, अलग अलग लोगों से मिला, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, उसे जवाब मिल ही नहीं चाहिए, और अगर आपने उत्तर नहीं दिया 7 दिन बाद आपका मंत्री पद चला जाएगा। मंत्री के सामने अब तो जीवन मरण का प्रश्न था, करें तो करें क्या, और अगर आपने उत्तर नहीं दिया 7 दिन बाद आपका मंत्री पद चला जाएगा। मंत्री के सामने अब तो जीवन मरण नहीं दिया 7 दिन बाद आपका मंत्री पद चला जाएगा। मंत्री के सामने अब तो जीवन मरण का प्रश्न था, करें तो करें क्या। मंत्री पूरे राज्य में घूमने के लिए निकल गया, अलग अलग लोगों से मिला, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, उसे जवाब मिल ही नहीं रहा था। 6 दिन बीत चुके थे, 6ठे दिन की शाम थी, वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तब उसे भेड़ चराने वाला गडरिया मिला और उससे कहा, भाई थोड़ा पानी हो तो पिला दो, बड़ी दूर से चलते हुए आ रहा हूं, परेशान हो चुका हूं। गडरिया ने कहा, बात क्या है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, वरना तुम्हारा मंत्री पद चला जाएगा, और उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। कि सुनो, प्रश्न बड़ा आसान सा लगता है लेकिन बड़ा मुश्किल है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति ऐसा दूध आपको पीना पड़ेगा। मंत्री ने कभी भेड़ का दूध पिया नहीं था, बोले ठीक है भाई पी लेंगे, आज आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है भाई, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूं, राजी हो गया हूं, तुम पी लो, तुम्हारा झूठा दूध पी लूंगा। गडरी ने उस दूध को झूठा कर दिया। उसके बाद मंत्री ने कहा, लाओ कटोरा दे दो, मैं दूध पी लेता हूं, तुम मुझे जवाब दो, मैं वापस जाता हूं, मेरा मंत्री पद बचाता हूं। गडरिया फिर से हंस के कहने लगा कि नहीं, इतना आसान नहीं, एक शर्त और है, आखिरी शर्त है। वो सामने की तरफ एक कंकाल पड़ा हुआ था, वो खोपड़ी रखी हुई थी, बोले इस खोपड़ी में मैं इस दूध को डालूंगा और आपको अब ये दूध पीना है। मंत्री ने सोचा, ये तो बड़ा मुश्किल, अंदर से गुस्सा बहुत आ रहा था कि बता क्यों नहीं रहा है, अब कह रहा है आखिरी शर्त है, चलो ये भी मान लेता हूं। मंत्री ने कहा, ठीक है, इस खोपड़ी में जो है वो दूध डाल दो, मैं खोपड़ी में रख के जो है दूध पीने के लिए तैयार हूं। खोपड़ी में दूध डाला गया और मंत्री जैसे ही पीने वाला था, गडरिया ने कहा, बस अब तो समझ जाओ मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मंत्री ने कहा, क्या? गडरिया ने कहा, भाई लालच वो कुआ है जिसमें एक बार उतर गए तो बाहर आना नामुमकिन है, तुम्हें लालच हो गया कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूं तुम करते ही चले जा रहे हो, तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा झूठा दूध पीने को तैयार हो, खोपड़ी में रखा हुआ दूध पीने को तैयार हो। बड़ी छोटी सी कहानी है, एक बार अगर आप विकार के कुएं में कूद गए, और ये कोई भी विकार हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह, आप विकार के कुएं में कूद गए, बाहर निकलना नामुमकिन है। इसलिए जीवन में विकारों से बच के रहिए, संतुलित रहिए, जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बना के चलना सीखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर
1: जी बहुत बढ़िया गलबात है, वैसे ले खांदी सी गलबात, पर नाल दी नाल मैसेज बहुत बढ़िया है, जो आप किसी भी तरह के लालच पै जाने तो फिर जिंदगी अगे जी अगे ही खिंची जाता सानू, तो आप पिछे ही तुरे रहने, सवेर का मतलब भी यह जे लालचा नू बचना चाहिए। तो प्रोग्राम का समा जरा 7:31 हो चुके हैं, स्टूडियो दड़ियों तो प्रोग्राम थोड़ी देर होर चले गए, एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लें, ब्रेक लैके वापस मिल जाए तो गल्ला बात करते हैं। सबदम रेडियो 94.7
2: फीमेल फैमिली फिजिशियन का स्वागत करता है।
3: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
2: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गलबात कर सकदे हो, ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
2: कॉल करो 5873606890 लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते, या कॉल करो 5873606890।
2: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
4: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है

0: ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM, संडे 1-5 PM।
4: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, अते citizenship application विच लंबा तजर्बा ते महारत रखता है। तो हार्डी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इको छत हेठ इमीग्रेशन अते इंश्योरेंस दी सेवावां प्रदान करते हैं। सानू संपर्क करने लई 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड,
5: रेगुलेटेड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट।
3: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
6: बिल्कुल जी, sabrang.ca पे विजिट करके देख सकते हो, ते उधर नाल-नाल ये प्रोग्राम जड़े निताई 250-300 किलोमीटर की दूरी तक सुने जाते हैं। तुहानू पता भी लागे लागे दे 125-150 किलोमीटर तक आराम नाल किसी भी डायरेक्शन तुसी जांदे हो ते इन्हां प्रोग्रामां नू सुन पांदे हो। सो विच इज गुड थिंग, क्योंकि कोई अपना प्रोग्राम जिहड़ा शाम नू होवे चाहे संडे नू दुपहर नू होवे, जे तुसी बाहर घूमते फिरदे हो ते इन्हां प्रोग्रामां नू जिहड़ा इंजॉय कर लैंदे हो। सो प्रोग्राम नू इंजॉय दी ते गल आ गई, बट नाल इक अद्धा गाना होर सुना दईए ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।
7: ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਚਾਹੀਦਾ।
8: ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ?
7: ਜਰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ।

0: समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: आज फिर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछ ना कि इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे। ते हुण फिर एक दिन वेट करनी पैनी है। ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो रह गए ना फिर पीछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है। ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर

0: सको। फोन नंबर है मानस अहूजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमी नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
3: सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या अली मदद, वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सर संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़। आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कैलगरी में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ता हुआ, रात को बारिश है और कल भी बारिश का मौसम ही रहेगा, तो प्लीज अपना ध्यान रखें और गाड़ियां ध्यान से चलाएं। बी केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द रोड, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत जनता है जो साथ में ट्रेवल कर रही है, तो अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखें। हमारी तरफ से यही मैसेज हम हर बार देते हैं। हर बार की तरह मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी कैलगरी में गर्मियां शुरू होती हैं तो हमारे कैलगरी में इवेंट्स की भरमार होती है और सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो इवेंट्स हैं गर्मी में लेके आती हैं, लेकिन ऊपर वाले का नाम 12 महीने 2400 घंटे लेना चाहिए और चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हमें उसका नाम नहीं लेना भूलना चाहिए। गर्मियों के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत अमेजिंग यात्रा निकालती है। एक तो हमने देखी है जो सिख परेड होती है हमारे गुरु घर की, और एक हमारी निकलती है चैरियट फेस्ट रथ यात्रा जो कि हर साल जून जुलाई के महीने में निकाली जाती है। उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ कैलगरी इस्कॉन से श्री द्वारकाधीश कृष्णदास जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इस रथ यात्रा में होने वाला है। सर, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
4: हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ,
3: जय जगन्नाथ। आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से हमारे इस प्रोग्राम में और हमारे स्टूडियो में। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हेयर एंड ग्रेसिंग द स्टूडियो।
4: थैंक यू सो मच फॉर अकोमोडेटिंग दिस ब्यूटीफुल इन्विटेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस्कॉन मंदिर की तरफ से, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।
3: ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपका जो मैसेज है वो कैलगरी वासियों तक पहुंचा सकें और इस अद्भुत रथ यात्रा के बारे में बातचीत कर सकें।

0: तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इस रथ यात्रा को निकाला जाता है?
1: तो अगर शास्त्र से अगर प्रमाण लेके हम चलते हैं
0: जी,
1: तो दो तीन ऐसी कथा है जहाँ के जिसकी वजह से ये जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई
0: जी।
1: जब भगवान द्वारका में थे
0: जी,
1: तो गोपिया गण विरह में हमेशा दे वर फीलिंग सेपरेशन
0: जी,
1: सो देयर वाज एन इवेंट वेयर दे वेंट टू द्वारका एंड रथ में बिठा के ठाकुर जी को अपने बहन और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में चैरियट से वृंदावन की तरफ और लेके आते हैं
0: जी।
1: सो दैट मार्क्स द चैरियट फेस्टिवल
0: जी,
1: उसकी वजह से ही जगन्नाथपुरी में ये शुरू हुआ
0: जी।
1: फिर दूसरी एक कथा है जहाँ पे नीलाद्री पर्वत है, जो नील माधव एक विग्रह है
0: जी,
1: बहुत सुंदर विग्रह
0: जी।
1: तो एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड towards this deity, उनको सपने में आया करता था and he wanted to find where this deity was
0: जी।
1: so ये बहुत लंबी कहानी है but संक्षेप में अगर बताए तो नील माधव ने उनके सपने में फिर उनको बताया कि I want to appear in this such a form
0: जी,
1: और फिर उनको instructions दिए गए and that's how the Jagannath's form appeared
0: जी।
1: so आज हम जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं
0: जी,
1: उसके बाद यही राजा ने ये प्रथा शुरू करी of this जगन्नाथ रथ यात्रा
0: जी।
1: So originally you will see that this Rathyatra practice has been going through in Jagannath Puri for thousands of years.
0: Ji, bilkul, bilkul, yes? bilkul.
1: But in the world level it was never prominent. Yes. So whenever we talk about Jagannath Rathyatra, agar aap Jagannath Puri mein jaake usko witness karenge, to hi aap Jagannath Rathyatra ko witness kar paayenge.
0: Ji.
1: बट वेन श्रील प्रभुपाद केम टू वेस्ट, जो इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद
0: जी,
1: तो वेन ही केम टू द वेस्ट ही वॉन्टेड जो जगन्नाथ जी का कार्य है, उनका नाम है
0: जी,
1: अकॉर्डिंगली ही शुड बी वर्शिप्ड
0: जी।
1: सो जगन्नाथ, जग के नाथ,
0: नाथ जो है,
1: ही इज नॉट अ नाथ फॉर ओनली जगन्नाथ पुरी, ये पूरे जगत के नाथ है
0: जी।
1: तो उनकी वर्शिप, उनकी रथ यात्रा हर जगह निकलनी चाहिए
0: जी।
1: So in Los Angeles, the first Rath Yatra started and it was a grand success, after which every ISKCON center, every city, every village, now you will see more than 2000 places, 2000 cities or you can say villages, sab jagah pe ye Rath Yatra nikalti hai. And this was all because of Srila Prabhupada's mercy. Ke unhone he took this risk of starting this Jagannath Rath Yatra. He wanted to give this Jagannath Kripa to everyone all around the world. Aisa nahi ki ye Jagannath ki Kripa sirf Jagannath Puri tak hi simit reh jaye. Yes, jag ke naath hai, to sabke liye openly available hone chahiye. And generally we see, you know, often we see ke aksar hame Thakur ji ke darshan karne ke liye unke ghar pe, unke mandir mein jana padta hai.
0: Ji.
1: But this is an event, this is a festival where Jagannath ji swayam apna ghar, अपना निज मंदिर छोड़ के स्वयं बाहर आते हैं भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाने के लिए। सो द रीजन इज देर आर सम, यू नो, स्पेशली इन जगन्नाथपुरी नॉट एवरीवन इज अलाउड टू विजिट द टेंपल,
0: इज इट?
1: यस,
0: बट व्हाई इट इज सो?
1: ओनली द हिंदूज आर अलाउड टू गो।
0: अच्छा,
1: कहीं ना कहीं उनके जो ग्रंथ है वहां पे उनके आचार्य गण ने बताया है
0: जी,
1: कि गोरे लोग जैसे हर चीज चोरी करके ले जाते हैं ना
0: जी,
1: वैसे कभी ना कभी ये लोग अपने जगन्नाथ को भी ले जाएंगे, छीन लेंगे।
0: अच्छा,
1: सो दे आर वेरी स्केयर्ड, दे वांट टू बी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स लॉर्ड जगन्नाथ एंड दैट्स व्हाई दे डोंट अलाउ व्हाइट पीपल और फॉरेनर्स इनटू द टेंपल प्रीमाइसेस।
0: लेकिन अगर आप जगन्नाथ को जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो सभी के नाथ है, राइट? तो अगर आप इस्कॉन की बात करें, इस्कॉन इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वहां पर भी तो गोरे लोग हैं, तो वो कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो जाता?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे हम श्रील प्रभुपाद देखते हैं
0: जी,
1: जैसे कृष्णा भावनामृत का जो प्रचार था
0: जी,
1: कृष्ण कॉन्शियसनेस भावनामृत का जो प्रचार था, इट वॉज ओनली लिमिटेड टू द भारत वर्ष भूमि।
0: Okay.
1: Not many people knew until the Indian people started migrating and settling in different countries abroad.
0: Ji.
1: So थोड़ा बहुत ज्ञान लेके वो लोग जाते थे
0: जी,
1: हमारे ऋषि गण या आचार्य गण या जो भी गुरुज थे
0: जी,
1: वो लोग भी धीरे धीरे इंडिया छोड़ के बाहर पाश्चात्य

0: हमारे देश में आते थे बट नन ऑफ देम वर वेरी सक्सेसफुल इन प्रीचिंग अबाउट कृष्णा
1: जी
0: और अबाउट द पास्ट टाइम्स और स्प्रेडिंग दिस भगवद गीताज नॉलेज बट देन व्हेन श्रीला प्रभुपाद केम ही हैड 100% फेथ ऑन हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा कि कृष्णा यू माय गुरु हैज आस्क्ड मी टू स्प्रेड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस द नॉलेज ऑफ भगवद गीता सो आई लीव इट कम्प्लीटली अनटू यू सो यहां से हमें सीखने को मिलता है संपूर्ण शरणागति जब संपूर्ण शरणागति कृष्ण को हम करते हैं तब कृष्ण बाकी का कार्य करते हैं एंड देन जस्ट लाइक दैट प्रभुपाद आल्सो हैड रियली हार्ड टाइम व्हेन ही वाज बिगिनिंग दिस मूवमेंट बट देन जस्ट लाइक बबल्स पॉप होते हैं पानी के अंदर वैसे ही ऑल दिस वाइट फॉरेनर्स डिवोटीज पॉप लाइक यू नो मैसेस एंड ये मूवमेंट इतना फ्लरिश हुआ इतना बढ़ने लगा बड़े बड़े बैंड्स लाइक बीटल्स दे स्टार्टेड जॉइनिंग ऑल्सो द मूवमेंट एंड दे मेड सो मेनी ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड भजन्स सो बहुत प्रख्यात हुआ और ये हुआ क्योंकि एक निष्ठा थी एक श्रद्धा थी कि गुरु का जो आज्ञा है उसको अगर फुलफिल करोगे विथ योर 100% डेडिकेशन दैट इज 100% डूएबल सो द स्ट्रेंथ हु इज द स्ट्रेंथ गिवर कृष्णा हिमसेल्फ सो कृष्णा भेजते हैं लोगों को अगर ये फेस्टिवल भी अगर जैसे ऑन अ स्मॉल स्केल वी आर डूइंग इट वी कैन नेवर आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट और अवर टेम्पल प्रेसिडेंट अलोन और द कम्युनिटी ऑल्सो कैन नॉट टेक द क्रेडिट इट्स द एफर्ट ऑफ द होल कैलगरियन ऑर्गेनाइजेशन और कैलगरियंस जो मैसेज में पीपल सारे जुड़ के आते हैं सो इट्स नॉट अ वन मैन शो दिस इज अ होल कैलगरी जो जुड़ के जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए इतना उत्साह के साथ बाहर आते हैं सो दे रियली वेट फॉर दिस टाइम बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम द लॉर्ड कम्स आउट हिमसेल्फ और जैसे आपने बताया कि जगन्नाथपुरी में ऐसा क्यों किया जाता है तो मैंने बताया उनका जो ग्रंथ है उनका जो बुक है उसमें लिखा गया है कि जगन्नाथ कभी देर आर अ चांसेस के जगन्नाथ कभी जगन्नाथपुरी छोड़ देंगे
1: अच्छा अच्छा अच्छा क्योंकि ये सेम चीज अगर हम बात करें अपने कई मंदिर हैं हमारे बड़े बड़े मथुरा में तो वो भी कृष्ण जी के मंदिर हैं तो वहां पर ऐसा कोई कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज तो नहीं है
0: नहीं सिर्फ जब मुगलों का अत्याचार हो रहा था एंड व्हेन दे अटैक्ड दैट टाइम सम ऑफ द मूर्तिज वर मूव्ड टू जयपुर उदयपुर and stuff like that borders pe Rajasthan ki borders pe so but otherwise jitne bhi purane mandir hai everything were abhi bhi hum log agar jate hain to bahut sare mandir hum log we see all this traditional stuff they are all maintained nicely
1: and preserved right
0: preserved very nicely
1: that's amazing so dosto ये रथ यात्रा निकाली जा रही है सैटरडे जून 20 दो बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काफी लंबा प्रोग्राम होता है 7 से 8 घंटे का तो अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज पहुंचें प्रिंसेस आइलैंड पार्क मेन एंट्रेंस है फ्री वेजिटेरियन खाना है वहां पर फीस्ट है जगन्नाथ दर्शन होंगे आपको लाइव म्यूजिक होगा और इस्कॉन जो हमारे मशहूर हैं और लोगों को वहां पर जाकर क्योंकि जब कृष्ण की बांसुरी बजती है जब कृष्ण का गुणगान होता है तो अपने आप ही इंसान झूमने लगता है और वो जो झूमना उसको हम डांस भी कह सकते हैं लेकिन ये सब ऊपर वाले की माया है जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर पाते हैं कल्चरल एग्जिबिट्स हैं बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है योगा और मेडिटेशन के बारे में आपको बताया जाएगा तो बहुत कुछ वहां पर आपके लिए है अगर आप सैटरडे को फ्री हैं और एंजॉय करना चाहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज आप सैटरडे 20 जून को 2 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंच सकते हैं प्रिंसेस आइलैंड पार्क जो कि डाउनटाउन में है सर ये पिछली बार से थोड़ा सा आपने डिफर किया है राइट yes. पहले जो यात्रा थी वो किसी और जगह से निकाली जाती थी लोकेशन चेंज हुआ है yes. उसके बारे में थोड़ा बताएं
0: सो लोकेशन एक्चुअली इज द सेम
1: ओके
0: जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया है पहले
1: अच्छा.
0: हम लोग कहीं और से शुरू करके प्रिंसेस आइलैंड पार्क प्रोसीड करते थे
1: जी
0: एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग एट प्रिंसेस आइलैंड पार्क गोइंग अराउंड डाउनटाउन एंड देन कमिंग बैक अगेन एट प्रिंसेस आइलैंड
1: जी जी जी
0: सो एज इट इज मेंशन्ड हियर जो प्रिंसेस आइलैंड का मेन एंट्रेंस है
1: जी
0: विच इज ऑन द साउथर्न साइड
1: जी
0: सो नॉट ऑन मेमोरियल साइड
1: जी
0: द साउथ साइड ऑफ पीस ब्रिज
1: जी
0: जहाँ पे प्रिंसेस आइलैंड का मेन एंट्रेंस है वहां से हम लोग 2 बजे रथ यात्रा परेड शुरू करेंगे
1: जी
0: सो 2 बजे से लेके

0: चार बजे तक रथ यात्रा परेड रहेगी
1: जी,
0: एंड चार बजे से लेके नौ बजे तक रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स लाइक कल्चरल प्रोग्राम्स जिसमें ड्रामास, प्लेज, डांस परफॉर्मेंसेस बच्चों के द्वारा ये सब किया जाएगा। देयर विल बी कीर्तन प्रोग्राम जहाँ पे जगन्नाथ जी है वहाँ पे अन्नकूट लगने वाला है, 1008 अन्नकूट का भोग लगेगा जगन्नाथ जी को।
1: अच्छा,
0: सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन ब्रिंग विदाउट प्याज लहसुन, लिक्विड स्टफ अवॉइड करें
1: जी,
0: एंड डॉलर स्टोर के जो छोटे फॉल कंटेनर्स होते हैं उसमें ठाकुर जी के लिए भोग बना के लेके आ सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कैन ब्रिंग इट टू द ग्राउंड
1: जी,
0: और डायरेक्टली चैरियट के ऊपर भी दे सकते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा इफ यू वॉन्ट टू ऑल्सो वॉलंटियर
1: जी
0: के ओके यू नो हम लोग भोग नहीं बना सकते हैं
1: जी,
0: हम धन से अगर कोई सपोर्ट कर सकते हैं यू कैन वॉलंटियर बी फिजिकली अवेलेबल टू मेक दिस फेस्टिवल हैपन इन अ ग्रैंड सक्सेस।
1: नो एब्सोल्युटली, बिकॉज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए कह सकते हैं सम्मान है कि हम इस जगन्नाथ जी के दर्शन लाइव कर सकते हैं, राइट? वरना बहुत कम ऐसे चांसेस हैं जहां पर इंसान साक्षात जाके दर्शन कर सके। इस वजह से एटलीस्ट ये सौभाग्य हमें मिलता है कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन जो है यहाँ पर कर सके।
0: मैं बता रहा था कि जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग मंदिर नहीं आ पाते, इट कैन बी एनी रीजन, यू नो सम पीपल थिंक भाई मैं मंदिर जाने के लायक नहीं हूँ इसलिए मैं मंदिर नहीं जाना चाहता हूँ
1: जी।
0: सम पीपल मे बी आउट ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल दे आर नॉट एबल टू मेक इट ड्यूरिंग द दर्शन आवर्स ऑफ द टेम्पल
1: जी,
0: सो इसीलिए जगन्नाथ स्वयं बाहर आ रहे हैं
1: जी।
0: सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी शुड टेक ऑल एडवांटेज ऑफ के वी सिंस जगन्नाथ इज वॉकिंग आउट ऑफ हिज टेम्पल
1: जी,
0: व्हाई डोंट वी गो एंड ग्रीट हिम, सी हिम, यू नो वर्शिप हिम
1: जी।
0: सो दिस इज अ जॉयस फेस्टिवल, कलरफुल फेस्टिवल जहाँ पे हर कोई मल्टी कलर कलर में यू नो कपड़े वगैरह पहन के आते हैं, ड्रेस वेरी नाइसली बिकॉज दे आर सो एक्साइटेड जगन्नाथ इज कमिंग आउट
1: जी।
0: भक्तगण हमेशा नाचते हैं, गाते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। सो इट्स अ फुल फेस्टिव एनवायरमेंट, प्रसाद लंगर भी बटेगा, देयर इज फ्री फीस्ट फॉर एवरीवन, वी आर एंटिसिपेटिंग मोर देन 15,000 पीपल। सो आप सबका स्वागत है एंड आप सबके सहयोग के साथ ही ये फेस्टिवल सक्सेस हो पाएगा। सो एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस आल्सो टुवर्ड्स मेकिंग दिस फेस्टिवल अ सक्सेस, यू कैन कम फॉरवर्ड, विजिट अवर वेबसाइट iskoncalgary.ca/rathyatra एंड यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स ओवर देयर।
1: नो दैट्स अमेजिंग। इस जो चैरिट बनता है सर, ये तो यहाँ पर तो छोटा उसका वर्जन बनाया जाता है, लेकिन ये अगर हम देखें जगन्नाथपुरी में तो ये ह्यूज होता है, बहुत ह्यूज, और उसको खींचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो क्या उसी तरह से यहाँ पर भी उसका छोटा स्वरूप बनाया जाता है
0: जी? सो द चैरिट दैट वी हैव हियर इज अ मेटल चैरिट जो एक्सपांड भी होता है, यू नो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, सो दैट वी कैन स्टोर इट नाइसली फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो बट दे लुक वेरी सिमिलर चैरियट्स एंड यस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, दिस लॉन्ग लॉन्ग रोप्स। ऐसे बताया जाता है शास्त्र में कि अगर जगन्नाथ जी के दर्शन, जगन्नाथ रथ के ऊपर जब विराजमान होते हैं जगन्नाथ जी, अगर कोई ये दर्शन कर लेता है तो ये जो मोह माया या ये जगत का जो इन्फिनाइट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसमें से आप दूर होते हैं।
1: क्या बात है, क्या
0: यू आर सेफ फ्रॉम दिस इन्फिनाइट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ
1: जी।
0: एंड देन अ पर्सन हु पुल्स द लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट, अगर आप जगन्नाथ का रथ खींचते हैं
1: जी
0: उनका फुल विद फुल लव एंड फेथ, देन जगन्नाथ आपको ये मटीरियल वर्ल्ड से
1: निकाल लेते हैं। सर हमारे रिलीजियस कल्चर में बहुत डीपनेस है, उसको समझने की जरूरत है और उसको अपने अंदर जिसे कहते हैं आत्मज्ञान, वो बहुत जरूरत है। तो आई थिंक रथ यात्रा तो एक माध्यम है, लेकिन आई थिंक इस्कॉन इज डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स वेयर यू नो वन कैन गो एंड ट्राई टू गेट दैट पीस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम ये रथ यात्रा सक्सेसफुल हो जाए तो मैं जरूर आपको दोबारा से आमंत्रित करूंगा और हम लोग इस्कॉन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और ज्ञान आपसे लेंगे कि होता क्या है वहां पर, किस तरह से जो उनकी एक परंपरा चली आ रही है, आपने जिनका नाम लिया, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था और जी जी, तो उनकी क्या थिंकिंग थी और आज इस्कॉन

0: वर्ल्ड वाइड है और लोग इसके मेंबर हैं. नॉट ओनली मैं कहूंगा कि पीपल फ्रॉम इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग टेम्पल.
1: 1400 सेंटर्स, फार्म कम्युनिटीज, छोटे छोटे नामहट्टा सेंटर्स, ये सब कुछ मिला के देयर इज लॉट्स ऑफ प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड.
0: जी आई टोटली अग्री विद यू. सो दोस्तों 22वीं एनुअल श्री जगन्नाथ यात्रा जो चैरियट फेस्ट है वो होने जा रहा है सैटरडे जून 20. अगेन 2 बजे से लेके 9 बजे तक के प्रोग्राम चलेगा. बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं. अगर आपको डोनेशन देनी है या आपने वॉलंटियर करना है तो आप बात कर सकते हैं. फोन नंबर मैं आपको बता सकता हूं 5875779210. दूसरा नंबर है 4032653302 और थर्ड है 4038080989. अगर आप ये मिस कर चुके हैं कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो डोंट वरी, आप फेसबुक पे हमारे जा सकते हैं और वहां से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां पर आए और आपने इतनी सहजता से हमें समझाया कि जगन्नाथपुरी की जो महत्ता है वो क्या है और किस तरह से जो ऊपर वाले बंसरी वाले हैं उन्होंने सबका मन जो है वो बांध के रखा हुआ है. तो बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन आपका क्या मैसेज है हमारे लिस्नर्स के लिए?
1: एज आई टोल्ड यू दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स ओनली वंस इन अ ईयर जहाँ पे ठाकुर जी स्वयं बाहर आते हैं. सो जैसे अभी शुरुआत में आपको बताया गया है कि अगर आप फ्री है तो आइए. आई वुड से अगर आप इवन कमिटेड है, इफ यू हैव सम प्लान्स मेड फॉर सैटरडे, प्लीज कैंसिल दोज प्लान्स. यू कैन पोस्टपोन दोज प्लान्स टू सम अदर डे, बट दिस रथ यात्रा फेस्टिवल प्लीज मेक इट हैपन. यू कम, टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ,
0: क्या बात,
1: टेक अन्नकूट महाप्रसादम, टेक लंगर प्रसादम. एंड अगेन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे सिर्फ खाने की वितरण नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट ऑर्डिनरी फूड दैट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, दिस इज जगन्नाथ महाप्रसादम. ये जगन्नाथ महाप्रसाद में जगन्नाथ की कृपा बसी हुई है. सो ऐसा अगर अन्न हम अगर लेते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी एलिवेट होती है. सो अगेन वी ऑल वेलकम यू टू कम जॉइन अस फॉर दिस रथ यात्रा फेस्टिवल. एंड ये 22nd ग्रैंड सेलिब्रेशन कैलगरी के अंदर होने जा रहा है. सो वन एंड एवरी वन शुड कम एंड टेक पार्ट. इफ यू हैव हर्ड दिस मैसेज यू कैन स्प्रेड इट टू ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट जगन्नाथ की कृपा से कोई वंचित
0: ना रह जाए. बहुत बढ़िया. फ्री का मेरा मतलब ये नहीं था, फ्री का मतलब ये था कई लोगों का काम होता है और लेकिन फ्री मतलब कि अगर आप काम रात से अपने नौकरी से फ्री हैं तो आप जरूर वहां पहुंचे.
1: जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अगर बाय चांस इफ एग्जांपल समबडी सो अगर छुट्टियां या कॉल इन सीख देते हैं
0: जी
1: वी समहाउ अटेंड द कॉन्सर्ट. सो ये राजा, दुनिया के राजा, दुनिया के हीरो ये स्वयं बाहर आ रहे हैं तो हमें हर चीज को सेकंड प्रायोरिटी बना के फर्स्ट प्रायोरिटी जगन्नाथ रथ यात्रा को देके डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए.
0: क्या बात है. तो दोस्तों जरूर पहुंचें हमारी 22nd चैरियट फेस्ट जो कि रथ यात्रा है सैटरडे जून 20 को 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रोग्राम चलेगा. प्रिंसेस आइलैंड पार्क मेन एंट्रेंस है, वहां पहुंच के इस प्रोग्राम को जरूर सफल बनाएं और जगन्नाथ जी के दर्शन लाइव आप करें और उनका आशीर्वाद लें. आप सुन रहे हैं रेडियो संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर. एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.
2: कि तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार. ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी. इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन. अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ. इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ भी देर शाम तक. ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696. कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है. किसी भी तरह की इंश्योरेंस

0: फोन के जरिए भी सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे।
1: बिल्कुल भाई, कोशिश पूरी रहेगी
0: जी।
1: तो आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया है कि कनाडा डे विच इज जुलाई 1st
0: जी,
1: वो हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी का स्पोर्ट्स डे हो रहा है
0: जी।
1: एज यू पॉइंटेड आउट सिनर्जी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि साउथ ईस्ट में है, जो कि काफी वेल नोन है बैडमिंटन अकेडमी के नाम से
0: जी,
1: तो बैडमिंटन अकेडमी वहीं से ऑपरेट होती है, प्लस इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे हमारा स्पोर्ट्स डे हो रहा है
0: जी।
1: तो हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है सभी से, आप सभी ऑडियंस से, सभी लिसनर से कि इसमें पूरे एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करें, और इसमें बहुत सारे 6 तरह के स्पोर्ट्स ला रहे हैं अमृत जी इसमें हम
0: जी। मैं देख रहा हूँ क्रिकेट, सॉकर, बैडमिंटन, चेस, कैरम और टेबल टेनिस
1: जी। जी ये सारे 6 स्पोर्ट्स हैं।
0: तो
1: क्रिकेट टीम बेस्ड स्पोर्ट है, सॉकर टीम बेस्ड स्पोर्ट है जिसमें आप टीम भी रजिस्टर कर सकते हैं और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी भेज सकते हैं। अगर आपके इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है तो हम आपके लिए टीम रेडी करेंगे
0: जी।
1: और अगर आपकी पूरी की पूरी टीम है 6 प्लेयर्स की, तो आप पूरी की पूरी टीम भी रजिस्टर कर सकते हैं।
0: सेम
1: गोज फॉर सॉकर और बैडमिंटन के लिए, आप सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स, जिस भी तरह के फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। टीटी के लिए भी सेम बैडमिंटन जैसे ही सिंगल्स या डबल्स और मिक्स डबल्स कैसे भी कर सकते हैं
0: जी।
1: बाकी हमारे पास चेस और कैरम भी हैं, और ये सभी एज ग्रुप्स के लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 6 इयर्स ओल्ड टू 65 इयर्स ओल्ड और अबव
0: जी।
1: तो इसमें एज बैरियर कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं रिक्रिएशनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, एवरीवन एंड ऑल, एवरीवन इज वेलकम टू द स्पोर्ट्स फेस्ट।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो दिवेश भाई, ये जो प्रोग्राम है इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे?
1: डे लॉन्ग प्रोग्राम है, सो सुबह 9 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगा और रात को 8 बजे तक चलेगा।
0: अच्छा।
1: और इसमें सारे स्पोर्ट्स एक साथ पैरेलल चलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सुबह टीटी से, अबाउट 3 hours टीटी चलेगा, और साथ ही सुबह 10 o'clock पे बैडमिंटन भी स्टार्ट हो जाएगा जो शाम को 6-7 बजे तक चलेगा।
0: अच्छा।
1: क्रिकेट हमारा 12 बजे स्टार्ट होगा दोपहर में, और वो शाम को 7-8 बजे तक चलेगा
0: जी।
1: एंड लाइक वाइज हमारे स्पोर्ट्स जो हमारे चेस और कैरम है वो अबाउट 3 o'clock पे स्टार्ट होंगे और वो शाम के 7-8 बजे तक चलेंगे
0: जी।
1: तो आप देखेंगे कि सुबह अर्ली स्टार्ट हम बैडमिंटन को, टीटी को दे देंगे, लेकिन वंस एवरीथिंग स्टार्ट सभी स्पोर्ट्स पैरेलल चलते रहेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है। सो दोस्तों, अगर आप इस स्पोर्ट्स डे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट करें दिवेश भाई को। फोन नंबर है 4036718969, और आप इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी की वेबसाइट पे जाके भी इस स्पोर्ट्स डे का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिवेश भाई, उसके अलावा एक और इवेंट के बारे में बात कर रहे थे आप
1: जी। अमृत भाई, आपके मीडियम से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपके लिसनर्स को कि हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी का एक सीनियर्स का भी प्रोग्राम चल रहा है विच इज कॉल्ड सीनियर्स कनेक्ट, और ये वीकली प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट एवरी संडे, ऑलमोस्ट तो खैर नहीं, अभी रेगुलरली एवरी संडे जेनेसिस सेंटर में होता है, एंड इट्स अ फ्री प्रोग्राम फॉर ऑल द सीनियर्स, चाहे और आपका वीजा स्टेटस इसमें मैटर नहीं करता। अगर आप विजिटिंग हैं, विजिटर स्टेटस पे हैं, पीआर हैं, सिटीजंस हैं, किसी भी स्टेटस पे हैं अगर आप, और आप सीनियर्स हैं 60+, तो हमारा ये प्रोग्राम रेगुलरली संडे को 1 PM टू 3 PM आफ्टरनून में जेनेसिस सेंटर मल्टीपर्पज रूम में चल रहा है, एंड इट्स लाइक अ ड्रॉप इन। हमारा एक सीनियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां से सारी इन्फॉर्मेशन रिले होती है, सबको उसमें इन्फॉर्म किया जाता है। बट अगर कोई नए सीनियर्स हैं कम्युनिटी में जो कि अपने फेलोशिप ढूंढ रहे हैं, कैमरेडरी ढूंढ रहे हैं, फेलो सीनियर्स की कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद उनको एक जो रेगुलर सीनियर्स प्रोग्राम है, वीकली प्रोग्राम है, वो शायद बहुत इजीली मिल रहा है ये, तो आप प्लीज इसका बेनिफिट उठाएं।
0: क्या बात है। अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो क्या नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कहाँ पे जा सकते हैं, किस वेबसाइट पे?
1: जी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 5879664896 पर। मेरा नंबर है 4036718969, इस पे आप सीनियर्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल्स अगर मिस भी हो जाए तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तो है कि हमें ईमेल कर दीजिए। अगर हमारी वेबसाइट से आप फेमिलियर हैं तो info@calgaryindians.org पे अगर आप वेबसाइट करते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हम ऑलमोस्ट डेली इस तरह का पोस्ट डालते हैं कि सीनियर्स इवेंट हो रहा है, जो लास्ट संडे को हुआ उसकी पिक्चर्स वगैरह डाल देते हैं। तो अगर आप हमें फेसबुक पे भी हमारे पेज पे आके हमें मैसेज कर दें तो बहुत सारे पाथवेज हैं हम तक पहुंचने के, बट आप कोई भी पाथवे से पहुंचेंगे आपको इस प्रोग्राम में इंक्लूड जरूर किया जाएगा।
0: क्या बात है दिवेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन, क्या मैसेज है हमारे लिसनर्स के लिए?

0: मिस्टर जी इमरान भाई की इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी के प्लेटफॉर्म पर हर एज ग्रुप्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी फ्लोट हो चुके हैं जो कि राउंड द ईयर चलेंगे. जैसे हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट करिए, सीनियर्स प्रोग्राम है, इसमें पार्टिसिपेट करिए. और भी टाइम टू टाइम जो भी हम प्रोग्राम रोल आउट करेंगे आपके मीडियम से, हम शेयर भी करते रहेंगे कम्युनिटी को. तो प्लीज हमारी वेबसाइट पे आइए, फेसबुक पेज पे आइए टू स्टे इन्फॉर्म. और ये सारे प्रोग्राम्स, मोस्टली सारे प्रोग्राम्स फ्री हैं, तो प्लीज इनका बेनिफिट उठाइए और हमारे साथ जुड़िए ताकि जो हम होम अवे फ्रॉम होम का एक मोटो रन करते हैं वो हम फुलफिल कर सकें और सभी को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दे सकें.
1: क्या बात है दिवेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन. आपको जल्दी मुलाकात होगी आपसे.
0: थैंक यू अमृत भाई, थैंक यू सो मच,
1: टेक केयर. सो दोस्तों, ये थे दिवेश ओबराई जी जिन्होंने अभी डिस्कस किया, रादर बताया, इन्फॉर्मेशन दी जो अमेजिंग इवेंट्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. जाइए कहीं नहीं, आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर.
2: रोड ते नवा ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है. होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
3: सुनो सुनो सुनो, ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो. ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया. ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो. तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां देंदे हन. बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208.
4: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल. सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन. चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन. अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ. इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा भी निग्गा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक. ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696. ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी. 587-617-4696.
5: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस. एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने. बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका. फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन. वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते. बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है.
6: ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ.
7: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ.
6: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ.
7: ਲੈ ਦੱਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ. ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408.
6: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208. ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ. ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਸਿਰਫ $7 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ਼ਾਟ, ਸੁੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਣ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 403-947-0060.

0: जहां आओ यूनिट 530669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलानू कैद करते हुए एक फोटो एक वार
1: पूरा साल हो गया गाना सुनती नु बस कैलगरी च कार लैन दी फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है ओना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है
2: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
1: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम कर दे जग्गी टिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी टिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445
3: जिंदरा मैड आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है
4: ओ तू सारा डब्बर कट्ठा करी फिरदा
5: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने कट्ठा करके दिता है JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004
6: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर अभी आपने बातचीत सुनी दिवेश ओबराई जी से जिन्होंने बताया कि अमेजिंग प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं तो आप जरूर उसका हिस्सा बने और जैसे गर्मियां आती हैं हमारे कैलगरी में इवेंट्स की भरमार हो जाती है एंड वी गेट टू सी सच ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इवेंट्स ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मंत्रा वो प्रेजेंट कर रही है रंग फोक डांसेस ऑफ इंडिया हमारा देश जो है दोस्तों आप नॉर्थ से लेके साउथ चले जाएं ईस्ट से लेके वेस्ट चले जाएं हर स्टेट का अपना एक डांस है अपना एक पहरावा है अपना खाना है और हर स्टेट में हम जहां भी इंडिया में ट्रेवल करें उसका अपना ही एक मजा है अलग अलग फोक डांसेस हमें देखने को मिलते हैं तो उसी तर्ज पर मंत्रा जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं रंग फोक डांसेस ऑफ इंडिया उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मंत्रा से दो नुमाइंदे आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं
7: धन्यवाद मैं शिवा गोली और मैं टीचर हूं और मैं रंग से मैंने मंत्रा से जुड़ी हुई हूँ कपल टू स्टार्टिंग से ही मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मंत्रा की
6: क्या बात
7: और या थैंक यू एंड
8: एंड माय नेम इज रेनु डाम आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो मी इन द सिटी फ्रॉम माय ब्रिटिश एक्सेंट
6: इवन इफ यू डोंट टेल योर नेम दे विल नो हु इज दिस पर्सन
8: मम एंड आई एम नाउ working and volunteering for the Mantra Art Society, which is very exciting for me because I love music and entertainment.
6: एब्सोल्युटली दोस्तों ये प्रोग्राम जो है आज का ये एम्पावर करते हैं YYC होम केयर सर्विसेज उनका फोन नंबर 8257600983 केयरिंग फॉर यू राइट एट होम उनका ये मानना है तो आप उनसे जरूर कॉन्टेक्ट करें आपको अगर उनकी सर्विसेज चाहिए मैं आऊंगा बहुत जल्दी जल्दी जल्दी हम इस पर बात करेंगे शिवाजी से शिवाजी पहले तो आप ये बताएं ये नाम किसने रखा आपका क्योंकि ये पहली बार मैंने किसी लेडी का नाम शिवा सुना है बहुत ही पावरफुल बहुत ही अमेजिंग नाम है बट फॉर श्योर लाइक बहुत ही अमेजिंग ये बात लगी मुझे कि अगर आपके पेरेंट्स ने ये नाम रखा है तो दैट्स अमेजिंग बिकॉज
7: ये मेरे ग्रैंडफादर ने
6: रखा अमेजिंग दिस इज अमेजिंग
7: बड़ी हो रही थी तो मेरे को बहुत खराब लगता था कि मेरे को लड़का का नाम क्यों दे दिया आई वॉज वेरी अपसेट मैं हर समय कंप्लेन करती थी मेरे एक हिंदी टीचर थे वो बोले शिव होता है
6: जी जी
7: शिव जो है वो है लिंग जो उनका है मेल और शिवा जो है फीमेल है
6: अच्छा
7: वैसे मेरे को समझा कि ना मेरे को शायद मैं मेरे को ये कर दी थी तो मैंने रख लिया नहीं तो बहुत था कि मैं चेंज कर लूं
6: लेकिन नहीं बहुत पावरफुल नेम है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी को इससे बुलाते हैं हाँ। इस नाम से तो ऐसा लगता है ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं क्योंकि उसी का एक अंग शिवाजी शिव जी हैं या कृष्ण जी हैं ये सब विष्णु जी के अवतार ही हैं तो इसलिए आई फील कि बहुत ही पावरफुल नेम है तो बात करते हैं इस अमेजिंग रंग जो फोक डांसेस ऑफ आप लेके आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या होने वाला है आप ये बताएं
7: अभी रंग में अभी हम लोग करेंगे

0: वाइज सम आर्टिस्ट वी पे सम आर्टिस्ट आर वॉलंटियर्स
1: जी
0: तो ये सब में ही चले जाता है
1: जी जी
0: बट वी डोंट कीप एनीथिंग फॉर अस लाइक कुछ सेविंग तो रखते नहीं है जस्ट वी जस्ट मेक इट लाइक इट हैज टू बी गुड इवेंट
1: बिल्कुल
0: दैट्स वन ऑफ आवर एम
1: बिल्कुल सो दोस्तों अगर आप बात करें आज की डेट में $15 और $20 तो आप एक टिम हॉर्टन्स पे जाते हैं तो कॉफी और बेगल में निकल जाता है तो आपको $15 में और $20 में आपको हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट रंग देखने को मिल रहे हैं और जैसे कि बताया शिवाजी ने कि कितने तरह के डांसेस जो हैं आपको 15 परफॉर्मेंसेस अलग अलग डांसेस की वहां देखने को मिलेंगी तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अगेन अपने संस्कृति से जुड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता क्योंकि अगेन आपको ये सब चीजें आप वीडियो पे देख सकते हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं लेकिन लाइव अपने शहर में अपने आगे जो हमारा लोकल टैलेंट है वो अगर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसका मजा ही अपना होता है तो अगेन मंत्र प्रेजेंट्स रंग जो कि फोक डांसेस ऑफ इंडिया है यह है बीएमयू थिएटर YMCA 11300 रॉकी रिज रोड नॉर्थ वेस्ट सैटरडे 27 जून 2026 टाइम है शाम को 4 बजे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुधा मेनन जी से 4038272456 पर और रेणु जी अगर इसकी टिकट्स लेनी हो तो कहां से लें प्लीज
2: इफ यू गो टू द वेबसाइट व्हिच इज mantraarts.ca
1: एंड
2: एज सून एज यू हिट दैट बटन
1: इट सेज
2: बाय टिकट्स इट गिव्स यू द पोस्टर इन्फॉर्मेशन एंड इट गिव्स यू ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो हमारे स्पॉन्सर्स भी वहां है वी हैव 7 स्पॉन्सर्स फॉर द इवेंट एंड इफ आई हैव टाइम आई विल एक्चुअली अनाउंस देयर नेम्स
1: यू हैव 2 मिनट्स Yes.
2: Okay, so Mako Canada Body Shop, Leela Eco Spa, Jocelyn's Aesthetics and Spa, Chennai Spices, Indian Restaurant, Dreamhouse Realty, Pixels YYC, YYC Home Care Services, and of course our media sponsor, Amrit Baraji from Radio Star, to whom we are very thankful. Thank you so much for having us on your show today. And, yes, so please come and support us. And ek bhi aur extra bhi hai. We have Spark Productions, who you know, Tanya and Vishal.
1: Yes.
2: Awesome Tanya and Vishal. They also are connected with Mantra as well. They also will be doing a special performance in the Rang Festival Folk Dances of India.
1: That's amazing. That's amazing. Bahut acha lagta hai, Renu ji. I feel so blessed that we have people like you, at least, jo hame yaad rakhte hain ki yaar aapke program mein aana hai aur iske bare mein baat karna hai. So we are so thankful to you who think, that we are also there, jo ki aapke jo words ko hain wo apne listeners tak pahuncha sakte hain. So thank you for making us part of this amazing event and all the events what you do because ye apni country ke saath, apne sanskriti ke saath judne ka ek tarika hai. So we are so thankful to you. For making us part of your amazing programs.
2: Thank you so much for inviting us. We feel very honored and privileged. You know, मुझे पता है आपके शो हमेशा इतनी अच्छी होती है and आपको पता ही है कि मेरी बेटी तो म्यूजिक में है
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
2: शौक म्यूजिक और
1: जी बिल्कुल
2: सिंग भी करती है सब कुछ करती है और मुझे सब बुलाती है संगीता की मम्मी
1: शिवाजी थैंक यू सो मच अगेन मैं आपको शिवाजी बोल रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि लेकिन बहुत अच्छा लगा सीरियसली मुझे मैंने आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की का नाम शिवा के ऊपर है दैट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम सो थैंकफुल टू योर ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने आपको ये नाम दिया कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों आप जरूर पहुंचे रंग फोक डांसर्स ऑफ इंडिया वेन्यू अगेन BMO सेंटर थिएटर YMCA सैटरडे 27 जून टाइम शाम को 4 बजे आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखें मस्त रहें व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें हैव अ गुड नाइट सी यू नेक्स्ट मंडे
3: जिंदरा मैडम आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है
4: ओ तू सारा टब्बर इकट्ठा करी फिरदा है
5: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने इकट्ठा करके दिता है JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 4034366000 और 4034062004
6: ओहो आज फिर नहीं लोड मिलिया
7: की होया
6: बस पूछना इंश्योरेंस

0: 4036171868।
1: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
2: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
1: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
2: ओहो, तो हानू नहीं कष्ट देना। अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
1: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाह भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-461-6161।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
0: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन, सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
0: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
4: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
0: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
4: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वेयर,
0: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
4: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
0: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
4: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, इना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमी नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
5: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਖੁਦ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696, 587-617-4696। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
4: रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜਸਰਡ। ਅੱਜ 16 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।